0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं और अब कुछ मजीद खबरें। अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुहिदे पर मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत के मकसद से बज़ाहिर आखिरी लम्हात की मुशावरत जारी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हफ्ते के रोज सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने मुज़ाकरात में शामिल ममालिक के रहनुमाओं से फोन पर बात की है। इनमें सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, तुर्की और सालिस पाकिस्तान शामिल थे। दोनों अतराफ के ज़राए इब्लाग के इदारे मुफाहमत की याददाश्त के मुंदरजात की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी का कहना है कि इस दस्तावेज पर लिबनान समेत तमाम महाजों पर लड़ाई खत्म करने और ईरानी खाम तेल और दीगर बरामदात पर से पाबंदियां आर्जी तौर पर हटाने की शिकें शामिल हैं, जबकि बातचीत जारी है। इसमें यह भी कहा गया है कि अमरीकी बहरी नाकाबंदी और आबनाए हुरमत से मुतालिक मसाइल के लिए 30 दिन मखसूस किए जाएंगे। जोहरी मामले पर मुज़ाकरात के लिए इसके मुतवाजी 60 दिन मुख्तस किए जाएंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमरीका और सालसी करने वाले ममालिक के हुक्काम के हवाले से कहा है कि ट्रंप एक ऐसे मुहाइदे को कबूल करने के करीब हैं जिससे वॉशिंगटन और तेहरान को हतमी मुहाइदे तक पहुंचने के लिए 30 दिन का वक्त मिलेगा। अहदेदारों ने यह भी कहा कि अगर जरूरी हुआ तो इस मुद्दत में 1 माह की तौसी की जा सकती है। न्यूज वेबसाइट ऑक्सियस ने अमरीकी अहदेदार का हवाला देते हुए कहा कि वॉशिंगटन और तेहरान मुफाहमत की एक याददाश्त पर दस्तखत करेंगे जो 60 दिन तक के लिए होगी। इत्तलात के मुताबिक अहदेदार ने कहा कि आबनाए हुरमस इस मुद्दत के दौरान बगैर किसी महसूल के खुली रहेगी। इसके इवज अमरीका ईरानी बंदरगाहों पर से अपनी नाकाबंदी खत्म करेगा और तेहरान को आजादाना तौर पर तेल फरोख्त करने की इजाजत देने के लिए पाबंदियों में कुछ छूट देगा। लेकिन तस्नीम न्यूज एजेंसी का कहना है कि अगर याददाश्त पर दस्तखत हो जाएं तब भी ईरान आबनाए हुरमस पर कंट्रोल जारी रखने का इरादा रखता है। ज़राए इब्लाग ईरान के जोहरी प्रोग्राम के बारे में मुख्तलिफ खबरें दे रहे हैं। ऑक्सियस के मुताबिक याददाश्त के मुसवदे में कहा गया है कि तेहरान कभी भी जौहरी हथियार रखने की कोशिश नहीं करेगा और यूरेनियम की अफजूदगी को रोकने और इंतहाई अफजूदा यूरेनियम के लिए अपने जखायर को संभालने के तरीके पर बातचीत करेगा। लेकिन तस्नीम न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट है कि ईरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम के हवाले से किसी किस्म के इकदाम को कबूल नहीं किया। न्यूज एजेंसी का यह भी कहना है कि ईरान मुंजमिद असासों को जारी करने का मुतालबा कर रहा है। रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ बड़े पैमाने पर किए जाने वाले हमले में कीव और दीगर मकामात पर 4 अफराद हलाक हो गए हैं। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने हमले की मजम्मत की है। उनका कहना है कि रूसी अफवाज ने ओरेशिंग का इस्तेमाल किया जो उनका जदीद तरीन दरमियानी फासले तक मार करने वाला बिलिस्टिक मिजाइल है। यूक्रेन की फजाइया ने ऐलान किया कि यह हमला इतवार की सुबह तक किया गया। हुकाम ने इत्तला दी है कि दारुल हुकूमत कीव में 2 अफराद हलाक और 78 जख्मी हुए। उन्होंने ये भी कहा कि 2 अफराद दारुल हुकूमत के गिर्द वाके कीव खित्ते में मारे गए। एक रिहायशी ने एनएचके को बताया कि उन्हें जो कुछ भी मिला वो उसे लेकर पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल होने वाले एक सबवे स्टेशन पर चली गई। उन्होंने मजीद कहा कि यह पहला मौका था जब उन्हें इतने तवील और खौफनाक हमले का तजर्बा हुआ। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर एक पैगाम पोस्ट किया। उनका कहना था कि रूस ने दारुल हुकूमत से 80 किलोमीटर जनूब में कीव खित्ते के कस्बे की जानिब ओरेशिंग दागा था। कहा जाता है कि रूस के इस जदीद तरीन मिजाइल को रोकना मुश्किल है।
1: और अब आज की अहम खबरों की 6 सुर्खियां। अमरीका और ईरान के दरमियान मुजाकरात में पेशरफ्त की तवक्को पर टोक्यो का कलीदी मियारी इशारिया पीर को पहली बार 65,000 की बुलंदी तक जा पहुंचा। اگلے ماہ جاپان سے لانچ کیے جانے والے H3 راکٹ کا مرکزی حصہ اتوار کے روز میڈیا کو دکھایا گیا اور آبنائے ہرمز سے گزرنے والا خام تیل کا ٹینکر جاپان پہنچ گیا ہے۔ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔